वीजा के 8 टुकड़े उसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। बीवी ने कहा, आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना। क्यों? शौहर ने कहा, आपकी कामवाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। क्यों? अपनी नवासी से मिलने बेटी क्या जा रही है, कह रही थी। ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालता। और हाँ, 500 रुपए दे दूं उसे। क्यों? अरे अभी ईद आ रही है, तब दे देंगे, और भी दे देंगे। अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी नवासी के यहाँ जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा, और इस महंगाई के दौर में उसकी तनख्वाह से क्या होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो अच्छा लगेगा ना। ओहो, तुम भी ना जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो। अरे नहीं, फिक्र मत करो, मैं आज का पिज्जा खाने का प्रोग्राम मनसूख कर देती हूँ। खामखा 500 रुपए उड़ जाएंगे बासी पाव के उन 8 टुकड़ों के पीछे। वाह वाह, क्या कहने, हमारे मुंह से पिज्जा छीनकर मासी की प्लेट में। 3 दिन बाद पोछा लगाती हुई काम वाली मासी से पूछा, क्या मासी, कैसी रही छुट्टी? बहुत अच्छी हुई साहब, बाजी जी ने 500 रुपए दे दिए थे ना, तो हो आई बेटी यहाँ से, मिल ली अपनी नवासी से। जी भाई, बहुत मजा आया, 2 दिन में 500 रुपए खर्च कर दिए। अच्छा, मतलब क्या क्या किया 500 रुपए का? जी, नवासी के लिए 150 रुपए की फराक, 40 रुपए की गुड़िया, बेटी को 50 रुपए के पेड़े दिए, 50 रुपए के पेड़े मोहल्ले के लोगों में, 60 रुपए किराए के लग गए, 25 रुपए की चूड़ियां बेटी के लिए, और दामाद के लिए 50 रुपए का बेल्ट ले लिया अच्छा सा, बच्चे में 75 रुपए नवासी को दे दिए कापी पेंसिल खरीदने के लिए। झाड़ू पोछा करते हुए पूरा हिसाब उसकी जबान पर रटा हुआ था। 500 रुपए में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़े टुकड़े किया हुआ बड़ा सा पिज्जा घूमने लगा। एक एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़ा मारने लगा। अपने एक पिज्जा के खर्च का मुआवजना वो काम वाली मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों के पेड़ों का, चौथा किराए का, पांचवां गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां दामाद के बेल्ट का, और आठवां टुकड़ा बच्ची की कॉपी पेंसिल का। आज तक उसने हमेशा पिज्जा का ऊपरी हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज्जा का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज्जा के 8 टुकड़े उसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। जिंदगी के लिए खर्च या खर्च के लिए जिंदगी का जदीद मफहूम एक झटके में उसे समझ में आ गया।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई।

इतने में सूरज डूब गया राधा की पायल जादू थी। दोनों में कला की जादू थी।

अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया,